ही तुम इस शरीर के हो। ये नश्वर शरीर तो एक पिंजरा है जिसमें हंस रूपी आत्मा अनश्वर है। समय आने पर ये आत्मा रूपी हंस उड़ ही जाएगा।

कैसे लगा आपको जो मोयाल स्मारहोर कान किशोदा द फिल्म कठपुतली ऑन द बीट ऑफ कल्याण जी आनंद जी एक बहुत अच्छा गाना हमने आपको सुनाए तो वेल वी बेस बैंड में तेरे ननंद तो होते होते तो होएगल सात बजे में नौ मिनट नेह मिनटन फोर जीव एक आप ओक द फिल्म चिराग एन आज एक सो ना दी हुस कैक दन जी की आशा परेख एन सुनील दत्त फिल्म चिराग का गाना हम आपको सुनाएंगे जब देख लिया तो छुपेंगे कहाँ मोहम्मद रफी का गीत है

7 बजने वाले हैं। ओ फ्रैंक लो हम लेकर हो रही है न्यूज़ ऑन योर और फ्रांस एंड बाकी जो मस्ती है समाचार वगैरह वगैरह मेरे जरिए जरूर सुनते रहना। अभी 7 बजे के बाद हम आपको सुनाएंगे दिट यूज लड़के फिलकर संगीत की देवी लता दीदी कॉम्ट फिल्म जिसका नाम है सवेरे वाली गाड़ी फिल्म का नाम है एंड दी फिल्म दिन प्यार के आएंगे सजनिया फन संगीत की देवी

हम सोचिला आज के लिए जो अवल बातें पते की बातें नहले पे दहले की चीज था हमने आपको सुनाए समझाए और बताए। 9 बजने में 5 मिनट बाकी 5 मिनट फोर नीक अभी 9 बजे मृत्यु समाचार कर जाएगा मैं कुलेखा भैया विजय रामबरन रस में नोखन गजेगंदे zonnige dag toe te wensen. Doe je ding, geniet ervan, pas goed op jezelf. Morgenochtend is in haar boot AJ met Good Day with AJ. Ja, Good Day with AJ. Nou, geniet ervan. Ik ga je groeten met een prachtig lied van Mohammed Rafi. Een verborgen muzikale schat. The best of the 60s. Film Nertaki, original soundtrack gaan we hem op kosten. Zindagi ke safar mein.

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। आम्स्टरडम से बेटा मनोज मिठू और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते इतवार के दिन में 80 साल की आयु में तख्तख्यार औत बेटा मनोज मिठू का पिता श्रीमती राजदे मिठू नथू का पति स्वर्गीय पिता श्री शिव नंदन मिठू और स्वर्गीय माँ श्री खीरिया जंगली के बेटा, 10 भाइयों और बहनों के भाई, 3 बहनोई के सार, 1 छोटकी का बड़को। आम्स्टरडम ज़ैतोस का रहने वाला श्रीमान सुंदर प्रसाद मिठू की मृत्यु निवास स्थान पर हो गई है। जिन्नू के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे, पहले सूरीनाम वेलखदाख आ का रहने वाला था। आम्स्टरडम से बेटा मनोज मिठू और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते इतवार के दिन में 80 साल की आयु में तख्तख्यार औत बेटा मनोज मिठू का पिता श्रीमती राजदेई मिठू नथू का पति स्वर्गीय पिता श्री शिवनंदन मिठू और स्वर्गीय माँ श्री खीरिया जंगली के बेटा, 10 भाइयों और बहनों के भाई, 3 बहनोई के सार, 1 छोटकी का बड़कू। आम्स्टरडम ज़ैतोस का रहने वाला श्रीमान सुंदर प्रसाद मिठू के मृत्यु निवास स्थान पर हो गई है। झिन्नू के नाम से लोग इन्हें पहचानते और पुकारते थे। सूरीनाम में पहले वेलखदाख आ का रहने वाला था। अर्थी के दाह क्रिया कल बुध के दिन में 3:30 बजे मोरखन वोंसदा हलफीर किए जाएंगे। वेस्खार्द क्रिमेटोरियम ओक मेरवेख 275 आम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में। विदाई कल यहीं पर आप ले सकेंगे। ये सूचना है भी कि निवास स्थान पर बैठक नहीं किए जाते हैं और निवेदन है फूल न लाने के लिए। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतफार्त फुरजोरखिंग समस्त परिवार मिठू के दुख में शामिल है।

ये उजाला रेडियो है, आपकी पसंदीदा रेडियो स्टेशन, जो अम्स्टरडम स्टूडियो से नशर किया जाता है। अब यहाँ से हम अपना हफ्तावार प्रोग्राम सबरंग आगाज करती हूँ। हर एक सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं हूँ आपका हमसफर निशा। सुदीनाम के सुनने वालों को भी एहतराम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमने सुनहरी दौर के सदाबहार गाने चुने हैं सुनवाने के लिए। इन गानों में उम्मीद है आपकी पसंद भी होगी। खुदा आप सबको अपनी ईमान में रखे। मुखलिस रिश्ते और दोस्त खुदा की नियमत होते हैं, उन्हें कभी ज़ाया मत करने दे, चाहे कितनी भी मजबूरी हो, क्योंकि मजबूरियां तो ख़त्म हो जाएंगी मगर दोस्त और रिश्ते दोबारा नहीं मिलेंगे। खुदा मेरे दोस्तों और चाहने वालों की हमेशा हिफाजत फरमाए और उन पर रहमतों का साया फरमाए।

ही हकीकत ख्वाब तू। सुफियाना कलाम पेश था, आवाज़ें थी जावेद अली और शादाब की। कलाम और मौसिकी खुद जावेद अली का था। सुरदास भजन सुनवाते हैं प्रसिद्ध गायक के एल सैगल की आवाज़ में।

सूरदास भजन आपने अभी महान गायक के.एल. सहगल की आवाज में सुना। उजाला रेडियो का प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं, जो आम्स्टर्डम स्टूडियो से नशर किया जाता है। इस प्रोग्राम में हम आपको कई शैलियों में प्रोग्राम पेश करती हूँ। गजल शौकीन के वास्ते हमने कुछ गजलें चुने हैं सुनवाने के लिए। उम्मीद है इन गजलों से आप लुत्फ उठाएंगे। जिंदगी जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता, बार बार बार बार कोई जान से प्यारा नहीं मिलता। है जो पास उसे संभाल के रखना, खोकर खोकर वो फिर कभी दोबारा नहीं मिलता।

शेराना अंदाज में पेश थी ये गजल। आवाज थी महान गजल गायक शहनशाह गजल नवाज उस्ताद मेहदी हसन साहब की। ये नज़र मुंतजीर है, मुंतजीर मतलब फरलांगन। ये नज़र मुंतजीर है तेरी आज भी, दिल किसी और से आशना ही नहीं। मैं क्यों रास्ता दूं किसी और को, जब कोई तेरे जैसा बना ही नहीं।

छू लेने वाली गजल पेश थी महान गजल गायक श्री जगजीत सिंह की आवाज में। कलाम था शायर कतील शफाई का। दिल में छुपा के रखा है तुमने वो सामान, हर सांस में बसी है तेरी ही दास्तान, तेरे ही पास है मेरी सुकून जान, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है।

आशा भोसले की शहद भरी आवाज में पेश थी ये गजल। शायर गुलजार का कलाम था, मौसिकी थी राहुल देव बर्मन की। मौसम खिजा में बहारों का समा, वो जब आते हैं फूल खिलते हैं।

संगीत अंदाज में पेश था ये जुगल गीत, एन दत्ता की मौसीकी थी। तर्ज को लिखने वाले थे शायर मजरू सुल्तानपुरी। इसी अंदाज में लीजिए अगला दो गाना पेश है।

अभी आपने गीता दत्त और हेमंत कुमार से ये दो गाना सुना। खुद हेमंत कुमार का सजाया संगीत था और शायर राजेंद्र कृष्ण का लिखा तर्ज। तुम ही तुम हो मेरे जीवन में, सुनाएंगे मीठी आवाजों में मोहम्मद रफ़ी साहेब और लता मंगेशकर जी।

फिल्म एक दिल और सौ अफसाने में से पेश था ये दो गाना। संगीत से सवारे थे शंकर जयकिशन, बोल था शायर हसरत जयपुरी का। इश्क के नशे में, इश्क के नशे में डूबे तो ये जाना हमने कि दर्द में तन्हाई नहीं होती, दर्द में तन्हाई नहीं होती, तन्हाई में दर्द होता है। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज़ न दो।

अनमोल नगमा पेश था नगमकार था शमीम जयपुरी और कल्याण जी आनंद जी की मौसीकी थी, आवाज़ स्वर की देवी लता मंगेशकर की। मेरा दिन उदास है और रात रात तन्हाई, ऐ दोस्त क्या कसूर था मेरा फ़कत तुझसे मोहब्बत के सिवाय।

सभी सुनने वालों को फिल्मी दुनिया में एहतराम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। इस हिस्से का प्रोग्राम में हमने फिल्मी दुनिया के उस महान फनकारों के बारे में बयान करती हूँ जो नए उभरते सितारों का प्रेरणा है, उन महान कलाकारों की तरह बनना चाहते हैं, जैसे कि धर्मेंद्र, जिसके बारे में हमने कई प्रोग्रामों में बयान किया है। धर्मेंद्र का प्रेरणा था दिलीप कुमार। वो बड़ा होकर दिलीप कुमार की तरह अदाकार बनना चाहते थे। कई प्रोग्रामों में हमने महान मारू शख्स धर्मेंद्र के बारे में बयान किया है, कैसे उनकी बचपन बीता और कब वो फिल्मी दुनिया में कदम रखे। पिछले प्रोग्राम में हमने बतलाई थी कि धर्मेंद्र ने अपना किरदार दिलो जान से निभाते थे, और जब उसे सवाल किया गया कि वो कई फिल्मों में काम किया जो ब्लॉकबस्टर हिट हुई, तो उसका क्या जवाब है, तो धर्मेंद्र साहब ने कहा, मेरे लिए अदाकारी कुदरत का तोहफा है। हाँ, एक बात मैं मानता हूँ, मुझे गाना पर डांस करने में थोड़ी घबराहट होती है। आगे क्या होता है, पहले एक गीत सुनवाती हूँ, फिर कहानी हम आगे बढ़ाएंगे।

फिल्म सीता और गीता का गीत पेश था। इस फिल्म में काम किए थे धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और संजीव कुमार। धर्मेंद्र ने कई फिल्मों में काम कर चुका था जो आवाम पसंद किया, लेकिन उसने खुद कहा था कि एक फिल्म जो उसे खुद पसंद था वो थी फिल्म फूल और पत्थर अदाकारा मीना कुमारी के साथ। धर्मेंद्र की पहली फिल्म मीना कुमारी के साथ थी फिल्म पूर्णिमा। धर्म ने कहा जब उसे कहा गया कि वो अदाकारा मीना कुमारी के साथ काम करेंगे तो वो एक तरफ घबराहट महसूस कर रहा था और दूसरी तरफ जज्बा। वो मीना कुमारी के बारे में जानना चाहते थे, वो कैसे थी। पर दोस्तों ने धर्म को तसल्ली दिलाए कि जिन्होंने मीना जी के साथ काम किए हैं सभी के साथ वो अपनापन जताती थी और नए उभरते सितारों को बहुत कुछ सीखने को मिला था। हाँ, दोस्तों ने धर्म से एक मशवरा दिया था कि पहली बार जब तुम मीना जी के सामने खड़े होंगे तो तुम ज़रूर उनकी पाँव छूना। धर्मेंद्र ने कहा मीना जी से मिलकर उसे सुकून मिला और जिस तरह से मीना जी मिलकर बातें की वो बयां नहीं कर सकता था। धर्मेंद्र और मीना कुमारी एक साथ कई फिल्मों में काम किए। पहली फिल्म थी पूर्णिमा, फिर मैं भी लड़की हूँ, काजल, फूल और पत्थर, चंदन का पलना, मछली दीदी और बहारों की मंजिल। अब हम सुनवाते हैं फिल्म पूर्णिमा में से ये दो गाना। गाने वाले हैं मुकेश और लता मंगेशकर।

0: फिल्म पूर्णिमा में से ये जुगल गीत पेश था जो मीना कुमारी और धर्मेंद्र पर फिल्माया गया था। इस गीत से पहले आपने सुना कि धर्मेंद्र जी मीना कुमारी के साथ कई फिल्मों में काम किया था। पहले तो मीना जी से मिलने के ख्याल से घबराहट महसूस कर रहा था, पर कई फिल्मों में साथ काम करने से दोनों की दोस्ती मजबूत हो गई थी। इसलिए क्योंकि धर्म ने मीना जी का बहुत ख्याल रखता था। धर्मेंद्र ने कहा, मीना जी के साथ काम करने से बहुत कुछ सीखने को मिला और वो खुलेआम उस कर्ज को कबूल किया कि उसने उसे वो बना दिया जो वो आज है। एक बार एक जर्नलिस्ट धर्म से मिलने उनके घर गया, इंटरव्यू लिया, फिर चाय और शरबत पीने के बाद वो वापस जाना चाहते थे, पर आगे के बागीचे में काम जो हो रहा था, धर्म ने कहा, हम आपको दूसरी तरफ से रास्ता दिखाते हैं। दोनों पीछे के गार्डन से गुजर रहे थे तो देखा दो औरतें बैठे हुए थे। धर्म जर्नलिस्ट को दोनों से तारुफ कराए और अपने बीवी प्रकाश से कहा, ये मेरा दोस्त है। प्रकाश कौर ने अदब से सलाम किया और कुछ कहा नहीं। फिर भी जर्नलिस्ट कहा, उस पल वो भूला नहीं। जर्नलिस्ट ने कहा, वो धर्म से मिलने कई बार उनके घर गए, पर हम उसकी बीवी और बेटियों की करीब नहीं जा सकते थे। फिर भी प्रकाश कौर घर गृहस्थी भागदौड़ सब वो संभालती थी। एक बार किसी ने धर्म से सवाल किया कि सर, आपने बेटा सनी की फिल्म बेताब लॉन्च किया शुरू किया तो जाहिर है दूसरी बेटा बॉबी से भी इसी लाइन में काम करवाएंगे, और आपकी बेटियों के बारे में मैं क्या ख्याल है? तो धर्म उसके तरफ गौर से देखा और कहा, प्लीज डार्लिंग, कभी ना लिखे कि आपने मुझसे ये सवाल किया है। धर्मेंद्र के दोनों बेटे फिल्मों में कामयाब हुए। सनी देओल की पहली फिल्म बेताब जो नेत्रेंद्रियन तख्तख में रिलीज हुआ था, तहलका मचा दिया था। सनी देओल के साथ थी अदाकारा अमृता सिंह, और दूसरा बेटा बॉबी देओल की फिल्म बरसात जो नेत्रेंद्रियन तख्तख में रिलीज हुआ था, ये भी ब्लॉकबस्टर फिल्म हुई। साथ में थी ट्विंकल खन्ना, राज बब्बर और डेनी डेजोंगपा। कहानी आगे बढ़ाते हुए सुनवाते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार से ये डुएट।
1: वादा?
2: हाँ वादा।

द बर्निंग ट्रेन से ये गीत पेश था और ये दो गाना फिल्माया गया था धर्मेंद्र और हेमा मालिनी पर। इस गीत से पहले आपने सुना कि धर्मेंद्र के दोनों बेटे सनी और बॉबी देओल फिल्मी दुनिया में मकबूल हुए। दोनों बेटे अपने वालदेन के साथ रहते थे, जॉइंट फैमिली थे। सनी देओल शादी के बाद अपने बीवी पूजा, दो बेटे करण और राजवीर और बॉबी अपने बीवी तानिया, दो बेटे आर्यमन और धर्म सभी मिलजुल के एक साथ रहते थे। धर्मेंद्र ने कहा अपने दो बेटे सनी और बॉबी की मेहनत फिल्मों में देखकर कभी कभी आंखें नम हो जाता था। हम सब आज भी हर रोज जिंदगी के बारे में सीख रहे हैं और उम्मीद है कि हमारे पोते एक दिन भी फिल्मों में कदम रखेंगे। उसमें मेरा खून जो है और ज़रूर कामयाब होंगे। मैं देख रहा हूँ कि आज बच्चों को अपने वालदेन से इतनी आज़ादी मिल रहे है। और कहा धर्म ने कि ऐसे कंप्यूटर्स है जिनसे अच्छे और बुरे दोनों नतीजा सामने निकले हैं। सभ्यता और तहजीब जिसके लिए हम हिंदुस्तानी जानी जाते थे वो भी जा चुके हैं। मुझे अपने बेटों पर बहुत फख्र है जो उन संस्कारों, तालीम व तरबियत को बरकरार रखे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं जो मेरी बीवी प्रकाश और मैंने उन्हें दिए हैं। जुहू में उनका बंगला रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों और यहाँ तक कि मीडिया के लिए भी घर खुला हुआ है और जब हम एक ही छत के नीचे होते हैं तो हम कभी भी सिनेमा के बारे में बातें नहीं करते हैं। अब हम आपको फिल्म प्रोफेसर प्यारेलाल में से एक गीत सुनवाते हैं। इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ काम किए थे जीनत अमान, सिमी गरवाल, शमी कपूर और अमजद खान।

इस गीत से पहले आपने सुना कि धर्मेंद्र ने कहा कि इस दौर के माँ बाप अपने बच्चों को आज़ादी दिए हैं और कंप्यूटर के ज़रिए क्या सीखते हैं क्या ना, पर वो फ़ख्र से कह सकते हैं कि वो अपने बीवी प्रकाश के साथ अपने बच्चों को संस्कार, तालीम व तरबियत दिए हैं जो अभी भी बरकरार है। धर्मेंद्र जी की मेहनत फिल्मी दुनिया में रंग लाए, अवाम उसे झुक कर सलाम करते हैं, फिर भी उसने अपने आप से सवाल करता, नौकरी करता, साइकिल पे आता जाता, फिर भी पोस्टर में अपनी झलक देखता, रातों को जागता, अनहोनी ख्वाब देखता, सुबह उठकर आईने से पूछता, क्या मैं दिलीप कुमार बन सकता हूँ? मैं कई बार अपने काम से फिल्मों में उम्मीदवार था, मुझे कोई अवार्ड ना मिला, मुझे गिला नहीं, रंज नहीं, अवाम तो मुझे सराहते प्यार करते हैं, वो अहम है। धर्मेंद्र ने फिल्म गद्दर के बारे में जिक्र किया, जिस फिल्म का हिदायतकार था अनिल शर्मा और प्रोड्यूस किया था नितिन केनी। फिल्म गद्दर में सनी देओल का किरदार लाजवाब कमाल का काम किया। बतवारे का समय नेखदी सैफ न फेतह की कहानी थी। इस फिल्म न सिर्फ इंडिया में पर विदेश में भी लोग इस फिल्म को बहुत पसंद किया, पर अफसोस फिल्म गद्दर में कई उम्मीदवार थे पर बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड फिल्म लगान को दिया गया। फिल्म गद्दर 9 बार उम्मीदवार थे। अब हम आपको फिल्म घायल में से एक गीत सुनवाएंगे। इस फिल्म को 7 बार फिल्म फेयर से नवाजा गया था और इसी फिल्म में सनी देओल को बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर का खिताब से नवाजा गया था।

फिल्म घायल का प्रोड्यूसर था धर्मेंद्र साहब और हिदायतकार थे राजकुमार संतोषी। अब हम अभय देओल के बारे में इत्तला करेंगे। अभय देओल धर्मेंद्र का भाई अजीत सिंह देओल का बेटा है। अभय अपने चचा धर्मेंद्र को पापा और अपना पापा को अंकल बुलाते हैं। वो बचपन से ही इसी परिवार में पले बड़े हैं। अभय देओल ने दो चार फिल्मों में एक्टिंग किया है। फिल्म सोचा न था का पेशकश था धर्मेंद्र जी। इस फिल्म में अभय देओल के साथ ही अदाकारा आयशा टाकिया। पत्रकार जब अभय से सवाल किया कि वो आज तक धर्मेंद्र के साथ क्यों फिल्म में काम नहीं किया, तो उसने कहा, मैं पापा को बहुत इज्जत करता हूँ, उसके सामने डायलॉग बोलना तो सवाल ही नहीं। मुझे नहीं पता कि अगर वो वहाँ हुआ तो मैं नॉर्मल रह पाऊँगा या नहीं। और कहा अभय, मैं भाइयों सोनी और बॉबी के साथ काम करना पसंद करूँगा, लेकिन बात वही, मुझे उनके साथ एक्टिंग करना है तो मुझे बेहतरीन होना है। आप फिल्मी दुनिया सुन रहे हैं। कई प्रोग्रामों में हमने महान फनकार धर्मेंद्र के बारे में बयान किया, उनके बचपन के बारे में, कब वो फिल्मों की तरफ रुख किया, धर्म के बीवी प्रकाश कौर उनके बच्चों के बारे में इत्तला किया। पर सारी दुनिया जानते हैं धर्मेंद्र का दूसरा देओल खानदान था। तो आज के लिए फिल्मी दुनिया यहीं पर रोक देती हूँ। अगले प्रोग्राम में हम बयान करेंगे।

अभी आपने फिल्मी दुनिया सुना, जिसमें हमने महान मारुष धर्मेंद्र के बारे में बयान किया। प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए सुनवाते हैं तलत महमूद से ये नगमा।

अनमोल नगमा पेश था, आवाज़ थी द मैन विद द गोल्डन वॉइस तलत महमूद की। अब आइए सुने लता मंगेशकर से ये नगमा।

खूबसूरत अंदाज में पेश था ये नगमा, संगीत से सवारे थे सचिन देव बर्मन। मोहब्बत भरे अंदाज में लीजिए पेश है ये दो गाना।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम सब रंग आप सुन रहे हैं, जो आम्स्टरडम स्टूडियो से नशर किया जाता है। इस प्रोग्राम में आपको कुछ सुनी कुछ अनसुनी गाने सुनवाती हूँ। हाँ, गाने जिसे सुनकर मन शायद बैठ जाए या बाग बाग हो जाए, और ऐसे प्रोग्राम आपको युवा रेडियो के जरिए सुनने के मिलते हैं। तो आइए सुने मोहम्मद रफ़ी साहिब और आशा भोसले की आवाज़ों में अगला दो गाना।

संगीत का नौशाद अली का सजाया संगीत और शायर एस बिहारी का लिखा तर्ज में पेश था ये दो गाना। अगला जुगल गीत पेश है मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में।

अभी आपने मुकेश और लता मंगेशकर से ये दो गाना सुने। इसी अंदाज में आइए सुने अब दलत महमूद और लता मंगेशकर से ये गीत।

अभी आपने संगीतकार शंकर जयकिशन का सजाए संगीत में ये दो गाना सुना। तर्ज को लिखने वाले थे शायर शैलेंद्र। क्यों दिल में बस के दिल को दुखाते हो तुम, किस कदर कदम कदम पे आजमाते हो तुम, हर पल रहते हो आंखों में तुम एक सपने की तरह, फिर क्यों इन्हीं आंखों को रुलाते हो तुम।

बार गीत पेश था। सचिन देव बर्मन संगीत से सवारे थे, तर्क को लिखने वाले थे साहिल लुधियानवी। अब आइए सुने किशोर कुमार से ये गीत।

नगमा पेश था गाने वाले थे किशोर कुमार। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत रचना था, तर्ज को लिखने वाले थे शायर आनंद बख्शी। किस तरह होता है मुमकिन ये गवारा करना, दिल में बसे हुए लोगों से किनारा करना। लोग कहते हैं कि हम तुमसे किनारा कर ले।

संगीत का रोशन का सजाया संगीत था, गीतकार था शायर साहिर लुधियानवी। मोहब्बत मोहब्बत रूह में उतरा हुआ मौसम है, ताल्लुक ताल्लुक खत्म होने से मोहब्बत कम नहीं होती। बहुत कुछ तुझसे बढ़कर भी मयसर था मयसर है, न जाने फिर भी क्यों तेरी जरूरत है।

फिल्म सारंगा में से ये दर्द भरा नगमा पेश था। सरदार मल्लिक की मौसिकी थी, कलाम था शायर भारत प्यास का। अब आइए सुने मोहम्मद रफ़ी साहब से ये नगमा।

फिल्म दो दिल में से ये नगमा पेश था। संगीत से सवारे थे हेमंत कुमार और तर्ज को लिखने वाले थे कैफी अजमी। इसी अंदाज में सुनवाते हैं अगला नगमा।

संगीतकार शंकर जयकिशन का सजाया संगीत था बोल शायर हसरत जयपुरी का। तेरी यादों के रास्ते की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाऊंगा मैं, दिल दिल तड़पता है तेरी खत पढ़कर, अब तेरी खत नहीं पढ़ूंगा मैं, कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ।

कभी तो नजर मिलाओ, नगमा में चार चांद लगाने वाली आवाज थी आशा भोसले जी की, मौसिकी अतनान सामी की। अगला गीत डर भरा गीत है, आवाज है लता मंगेशकर की।

संगीतकार शंकर जयकिशन का सजाया संगीत था बोल शायर शैलेंद्र का। अब आइए सुने किशोर कुमार से, ये गीत और ये प्रोग्राम का आखिरी गीत है।

वो कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टरडम से बेटा मनोज मिठू और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते इतवार के दिन में 80 साल के आयु में तख्त यार और बेटा मनोज मिठू का पिता श्रीमती राजदे मिठू नथू का पति स्वर्गीय पिता श्री शिव नंदन मिठू और स्वर्गीय माँ श्री खीरिया जंगली के बेटा 10 भाइयों और बहनों के भाई 3 बहनोई के सार एक छोटकी का बड़को अम्स्टरडम ज़ैतोस का रहने वाला श्रीमान सुंदर प्रसाद मिठू की मृत्यु निवास स्थान पर हो गई है। झिन्नू के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। पहले सूरीनाम वेलखदाख आ का रहने वाला था। अम्स्टरडम से बेटा मनोज मिठू और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते इतवार के दिन में 80 साल की आयु में तख्त यार औत बेटा मनोज मिठू का पिता श्रीमती राजदेई मिठू नथू का पति स्वर्गीय पिता श्री शिवनंदन मिठू और स्वर्गीय माँ श्री खीरिया जंगली के बेटा 10 भाइयों और बहनों के भाई 3 बहनोई के सार एक छोटकी का बड़कू अम्स्टरडम ज़ैतोस का रहने वाला श्रीमान सुंदर प्रसाद मिठू के मृत्यु निवास स्थान पर हो गई है। झिन्नू के नाम से लोग इन्हें पहचानते और पुकारते थे। सूरीनाम में पहले वेलखदाख आ का रहने वाला था। अर्थी के दाह क्रिया कल बुध के दिन में 3:30 बजे मोरखन वोंसदा हलफीर किए जाएंगे। वेस्खार्ड क्रिमेटोरियम ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में। विदाई कल यहीं पर आप ले सकेंगे। ये सूचना है भी कि निवास स्थान पर बैठक नहीं किए जाते हैं और निवेदन है फूल न लाने के लिए। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतफार्त फुरजोरखिंग समस्त परिवार मिठू के दुख में शामिल है।

ये ढेर जने प्यार मोहब्बत कर रहे हैं माँ बाप, प्यार मोहब्बत करने वालों दुनिया छोड़ चलेंगे तो प्यार मोहब्बत करे हैं तो यहाँ पे कीजिए हीर और आज मत दुनिया छोड़ के तो ना चल जा, हम दोनों प्रेमी दुनिया छोड़ चले। चलिए हम आपको सुनाते हैं।

0: चटकार रही। जो आपके मन में आते हो ना वही करना, लेकिन अच्छी तरह या सही करना। मी स्टार्कलिंग ती खुट एन कॉम टी अर्थ योर द फॉर फंडाग उजालास हॉरोस्कोप।
1: यू आर उजाला रेडियो।
2: सतीश सन नाम का बाबू हॉलैंड में रहने वाला, सतीश का नाम है वेक अप शोमैन, सबको जगाने वाला।
0: Wanna enjoy your day? Nou, go for it. Tot een mooie dag, dus geniet ervan. Dat was het dan voor vandaag, horoscoop.

0: हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा।
1: वेलकम बैक, मैं हूं शहीद गुलजार। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आइए मिलकर सुनते हैं द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, लता जी की आवाज में श्रद्धांजलि। मोहम्मद रफी का गाया हुआ सिलेक्शन, सुहानी रात ढल चुकी।

सुहानी रात ढल चुकी न जाने तुम कब आओगे, जहाँ की रुत बदल चुकी है न जाने तुम कब आओगे। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर की आवाज में श्रद्धांजलि आपने अभी सुने हैं। ओरिजिनल सॉन्ग आपको तो मालूम होगा, मोहम्मद रफ़ी साहब से गाया हुआ है, फिल्म का नाम दुलारी। इस बार प्रोग्राम में द गोल्डन वॉइस ऑफ इंडिया सोनू निगम, तेरी शर्द दा बटन।

आई हार्ट फैन तेरे है। अरे क्या सुपर कूल है हम। फिल्म का नाम, गाने वाले फनकार, गोल्डन वॉइस ऑफ इंडिया सोनू निगम, आउटस्टेशन है।

पुराने बुड्ढा है का उजाला रेडियो का पैगाम है और फोन का नंबर वैसे रेडियो के क्षेत्र पर हर एक काम काज के वास्ते एम्स्टरडेम में आप डायल कर सकते हैं 020-409-08-07 पर 020-409-08-07 पर सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह में 10 बजे से लेकर दिन में 3 बजे

0: कैसे हो?
1: 24/7
2: उजाला
3: उजाला उजाला
2: मिले जुले संगीत में मिक्स मार्क्स सॉन्ग्स में फिल्म का नाम सन्नाटा। हे सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, जो भी मैन हो, यू नो हाउ मच आई लव यू। हमारे सभी श्रोताओं को एक शुभ दिन मुबारक दिन अर्ज किए जा रहे स्टूडियो से। प्रोग्राम को आप सुनते रहना और सुनते ही जाना।

Superman, you know how much I love you, you know how much I care for you. उजाला रेडियो के जरिए मिले जुड़े संगीत मिक्स मैक्स सॉन्ग्स शहीद गुलजार के जरिए पेश किए जा रहे हैं, और अब हो जाए द राजंस के साज पर हम दोनों, यानी कि हम और

अभी आपने सुने हैं उजाला रेडियो पर ये शानदार सिनेमा जो कि पेश किया गया है. चेक फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन उजाला.nl उजाला रेडियो डीएबी प्लस पर हॉलैंड भर में.

0: live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

0: effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

कि ढेर जने प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, मैं प्यार मोहब्बत करने वालों दुनिया छोड़ चलेंगे दस हजार नहीं खोर दत कम सौ नहीं थे। तू प्यार मोहब्बत कर रहे हैं तो यहाँ पे कीजिए हीर ऑफ आज, मैं दुनिया छोड़ के तो ना चल जा, हम दोनों प्रेमी दुनिया छोड़ चले। चलिए हम आपको सुनाते हैं।

ई गनवा जो हम तू लोग के खातिन ड्राई करबे या ई गनवा जो नहीं जो अब हम चलाए लाए गनवा तो ई गनवा जो हम चलाए तो खातिन ई गनवा इस अब कैन नंबर लड़की बड़ी अनजानी है द फिल्म कुछ कुछ होता है दिस नंबर इज गसोंग इन रेगे स्टाइल में गनवा आप सुनेंगे गनवा तू सुनिए रेगे स्टाइल में हाँ सरनामी में बोली ये रेगे स्टाइल में तू गनवा सुनिए लड़की बड़ी अनजानी है मार लेट अप गनवा मोय से गाइस हैगा म्यूजिक मोय हैगा मार सोमग वर्ड स्प्रेक से नीत गुड आउट सपना है सच दिस इन प्लेस फॉर बड़ी सेग से बडी देखो ये ऑफ बड़ा सेग से दन बड़ा ये तो वही मत दैट होर ये नु नीत है तू ना सुन मैं सुन और एक ढंग दिस हू म्यूजिको कैसे हैगा एंड स्टेमो कैसे हैगा मैं सोमग वर्ड फरगेव कर दे सुन ले तो लड़का बड़ा मार म्यूजिको मोह हैगा आवाज मोह हैगा सोमग वर्ड ना मोह बोलिस हैगा मैं कोई बात ना हैगा इसे इंडोनेशिया के मा कोई बात ना मोइस रहिए एन फाइन मिदाग दिट वाज उजालास कॉफी चाय मिदाग शो आज के लिए

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे। और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। आम्स्टरडम से बेटा मनोज मिठू और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते इतवार के दिन में 80 साल के आयु में तख्तख्यार औत बेटा मनोज मिठू का पिता श्रीमती राजदे मिठू नथू का पति स्वर्गीय पिता श्री शिव नंदन मिठू और स्वर्गीय माँ श्री खीरिया जंगली के बेटा 10 भाइयों और बहनों के भाई 3 बहनोई के सार एक छोटकी का बड़को आम्स्टरडम ज़ुइटोस का रहने वाला श्रीमान सुंदर प्रसाद मिठू की मृत्यु निवास स्थान पर हो गई है। झिन्नू के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। पहले सूरीनाम वेलखदाख आ का रहने वाला था। आम्स्टरडम से बेटा मनोज मिठू और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते इतवार के दिन में 80 साल की आयु में तख्तख्यार औत बेटा मनोज मिठू का पिता श्रीमती राजदेई मिठू नथू का पति स्वर्गीय पिता श्री शिवनंदन मिठू और स्वर्गीय माँ श्री खीरिया जंगली के बेटा 10 भाइयों और बहनों के भाई 3 बहनोई के सार एक छोटकी का बड़कू आम्स्टरडम ज़ुइटोस का रहने वाला श्रीमान सुंदर प्रसाद मिठू के मृत्यु निवास स्थान पर हो गई है। झिन्नू के नाम से लोग इन्हें पहचानते और पुकारते थे। सूरीनाम में पहले वेलखदाख आ का रहने वाला था। अर्थी के दाह क्रिया कल बुध के दिन में 3:30 बजे मोरखन वोंसदा हलफीर किए जाएंगे। वेस्ट खार्ड क्रिमेटोरियम ओक मेरवेख 275 आम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में। विदाई कल यहीं पर आप ले सकेंगे। ये सूचना है भी कि निवास स्थान पर बैठक नहीं किए जाते हैं और निवेदन है फूल न लाने के लिए। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतवार्त फुरजोरखिंग समस्त परिवार मिठू के दुख में शामिल है।

और उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी आप मृत्यु समाचार को सुने। और यहीं से शोक प्रोग्राम यादें आप सुनेंगे। इसमें गीत होंगे और ये गीत पेश है अम्स्टरडम से बेटा मनोज मिठू के तरफ से अपने स्वर्गीय पापा स्वर्गीय पिताजी कहिए स्वर्गीय श्री सुंदर प्रसाद मिठू की याद में। 80 साल की आयु में बीते इतवार इनका मृत्यु हुए है और इन्हें लोग झिन्नू के नाम से पहचानते और पुकारते थे। कल दाह क्रिया किए जाएंगे। तो बेटा मनोज मिठू की तरफ से प्यारा स्वर्गीय पापा के याद में अगला गीत प्रोग्राम में पेश है।

0: पापा आप बहुत याद आए और गीत भी आप प्रोग्राम में जो सुने, तो ये गीत पेश की गई अम्स्टरडम से बेटा मनोज मिठू की तरफ से। प्यारा स्वर्गीय पापा, स्वर्गीय श्री सुंदर प्रसाद मिठू के याद में 80 साल की आयु में बीते इतवार अम्स्टरडम में इनकर मृत्यु हुए, जिन्नू के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। तो बेटा मनोज मिठू की तरफ से स्वर्गीय पापा की याद में गीत पेश की गई। यहीं तक आप सुने भी उजाला रेडियो पर सोख प्रोग्राम यादें।
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
3: Hallo, hama naam is Subhans aur aap log sun rahe Ujala Radio ka program.
4: Aap sun rahe hain Ujala Radio.

0: ये है उजाला रेडियो, आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन यू आर।
1: पत्ता टूटे डार से कि ले गए पवन उड़ाए, यारी बिछुड़े यार से ये दुख हमसे सहा न जाए।

और जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। फिल्म जख्म का गीत आप सुने अलका याग्निक से, और ये उजाला रेडियो है।

एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे और फूल हैं फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा ना था। यस बॉस, फिल्म का नाम कुमार सानू एंड अलका याग्निक से आप सुने उजाला रेडियो का प्रोग्राम में सुने वालों। एक बार फिर अलका जी।

उजाला रेडियो है सुनने वालों, और इसी के साथ आरंभ किया जा रहा है एक और प्रोग्राम दर्दे दिल। दर्दे दिल प्रोग्राम हम बना रहे हैं आप सुनने वालों के लिए दर्द भरी गीतों के साथ, उन गीतों के साथ जिन गीतों को सुन करके तो कभी दिल को सुकून मिलता है और कभी कभी दिल का दर्द और बढ़ जाता है। कुछ भी हो, कैसा भी हो, प्रोग्राम आप ही के लिए हम बनाते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आप सुनेंगे और पसंद भी करेंगे। तो चलिए आज का प्रोग्राम में पहला गीत लता जी की आवाज में पेश है।

उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते। लता जी की आवाज में गीत आप सुने 1958 1958 के फिल्म अदालत का गीत और मदन मोहन संगीत से सजाइए। और इस फिल्म में उन दिनों काम किए थे प्रदीप कुमार के साथ नरगिस।

क्या हुआ एक बात पर कि बरसों का याराना गया। अमित कुमार, हाँ अमित कुमार की आवाज में गीत आप सुने 1982 के फिल्म तेरी कसम से निकाला हुआ। राहुल देव बर्मन म्यूजिक कंपोजर और फिल्म में काम किए कुमार गौरव के साथ पूनम ढेलोंजी। उजाला रेडियो है ये, प्रोग्राम का नाम दर्द दे दिलो।

दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दे। लता जी की आवाज में आप गीत को सुने, फिल्म बहु बेगम। हाँ, बहु बेगम फिल्म का नाम 1967 निखंतिन जीफन जस्तख के फिल्म, और संगीतकार थे रोशन। इस फिल्म में काम किए अशोक कुमार, प्रदीप कुमार और मीना कुमारी।

और गीत अभी आप जो सुने मुकेश जी की आवाज में फिल्म साथी से निकाला हुआ गीत और 1968 नहीं खुनती नख्तन जस्तक के फिल्म साथी से जिसमें म्यूजिक कंपोजर थे उन दिनों नौशाद और इस फिल्म में काम किए राजेंद्र कुमार के साथ में विजयंती माला उजाला रेडियो है ये प्रोग्राम दर्द दिल दर्द भरी गीतों के साथ

गए सांवरिया। एक बार फिर लता जी प्रोग्राम में हिस्सा लिए। फिल्म बैजू बावड़ा का गीत था। 1952 के फिल्म में संगीत से सजाए गीत को नौशाद, और इस फिल्म में उन दिनों काम किए मीना कुमारी के साथ भारत भूषण।

तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती। द मैन विद द गोल्डन वॉइस, तलत महमूद साहब की आवाज़ में आप सुने नौशाद। एक बार फिर संगीत से सजाइए इस गीत को, और फिल्म बारादरी से निकाले गए 1955 नीखंतिन फैफन फैफ्तख के फिल्म, जिसमें काम किए उन दिनों रमेश ठाकुर के साथ गीता बली।

0: पिया बिना लता जी की आवाज, फिल्म अभिमान, हाँ अभिमान का गीत जो 1973 निखंतिन द्रियन सीफन तख में बनाए गए सचिन देव बर्मन संगीत से सजाए, और इस फिल्म में काम किए अमिताभ बच्चन के साथ जया भादुरी, जया बच्चन, हाँ जया भादुरी बच्चन। उजाला रेडियो है ये सुनने वालों, और प्रोग्राम दर्द दिल आपके लिए बना रहा हूं।
1: क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाएं?

क्या हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ, किशोर कुमार की आवाज़। फिल्म अमर प्रेम का गीत, फिल्म को बनाए गए 1972 1972 में, राहुल देव बर्मन संगीत से सजाए और इस फिल्म में काम किए राजेश खन्ना के साथ शर्मिला टैगोर जी।

दिल देता है रो रो दुहाई कि किसी से कोई प्यार ना करे। अलका जी, हाँ, अलका याग्निक की आवाज। फिल्म का नाम फिर तेरी कहानी याद आई। फिर तेरी कहानी याद आई एक फिल्म जो 1993 में नेहंतिंद्रियन नेहंतख में बनाई गई है। अनु मालिक संगीत से सजाए और इस फिल्म में काम किए पूजा भट्ट के साथ राहुल रॉय। और ये है उजाला रेडियो, प्रोग्राम का नाम है दर्द दिल, दर्द भरी गीतों के साथ। हिस्सा ले रहा है अब मोहम्मद रफ़ी साहब प्रोग्राम में।

ढेर जने प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, मैं प्यार मोहब्बत करने वालों दुनिया छोड़ चलेंगे। दस हजार लोग नहीं खोर दत कम सोनी थे, तू प्यार मोहब्बत करे हैं तो यहाँ पे कीजिए हीर ऑफ आज, मैं दुनिया छोड़ के तो ना चल जा, हम दोनों प्रेमी दुनिया छोड़ चले। चलिए हम आपको

और ये गनवा जो हम तुम लोग खातिन ड्राई कर गनवा जो है जो अब हम चलाए लाए गनवा तो ये गनवा जो हम चला रहे थे और खातिन ये गनवा ऐसा कहने में लड़की बड़ी अनजानी है फिल्म कुछ कुछ होता है दिट नंबर इसका सॉन्ग इन रेगे स्टाइल में गनवा आप सुनेंगे ये गनवा तू सुनिए रेगे स्टाइल में हाँ सनामी में बोली ये रेगे स्टाइल में तू गनवा सुनिए लड़की बड़ी अनजानी है मार लेटॉप गनवा मोए से गाय हैगा म्यूजिक मोए हैगा मार सोमग वर्ड स्प्रेक से नीत गुड आयत दिस इन प्लास फन बड़ी सेख से बडी ऑफ बड़ा सेख से दान बड़ा ये तो मत दत हो रही है न्यू नीत है तू ना सुन मैं सुन और एक ढंग दिस हू म्यूजिकवा कैसे हैगा एंड स्टेमवा कैसे हैगा मां सोमग वर्ड वर्ड फरगेव कर दे